घर बजाने लगा तू फोन बात तो कहाँ मेरे गाँव आ जा दूर कह देना मैं यहाँ मैं यहाँ चार चार